0: 诠释了友谊的宝树温暖的光亮，歌曲名字叫 Give me some sunshine。
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो